0: वंदे मातरम।
1: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा

0: बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में गाए इस मातृवंदना से। रचना है डॉक्टर हरि सिंह गौर की और संगीत संयोजन है डॉक्टर ललित मोहन का।

अभी आपने समूह स्वर में मातृवंदना सुनी। रचना थी डॉक्टर हरि सिंह गौर की और संगीत संयोजन था डॉक्टर ललित मोहन का। इस मातृवंदना के बाद आइए अब सुनते हैं ये गणेश वंदना। रचना और स्वर है हरिओम शरण का।

हरिओम शरण का लिखा हुआ ये भक्ति गीत अभी आपने सुना उन्हीं के स्वर में। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मन्नाडे लक्ष्मी शंकर और साथियों का गाया हुआ ये भजन। रचना है उद्धव कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे उद्धव कुमार की रचना, स्वर था मन्नाडे लक्ष्मी शंकर और साथियों का। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम अर्चना के आखिर में आपको सुनवाते हैं अनूप जलूटा की आवाज़ में मंजीत कोहली की ये भक्ति रचना।

बार कन्हैया अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया अपने घर में मिठाई मिश्री दूध दही सब तो है, फिर तू हमेशा माखन चोरी क्यों करता है? और कुछ क्यों नहीं चुराता? तो

अभी आपने मंजीत कोहली की ये रचना सुनी, स्वर था अनूप जलोटा का। इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 63वां भाग आप सुनेंगे और मुख्य गायक स्वर होगा श्रीकांत पारगावकर का। भूले बिसरे गीत, पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 से। 6:55 पर होंगे संस्कृत में समाचार, अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 7 से सुना जा सकता है दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है सोयाबीन और उड़द में खरपतवार से हानि, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं अंकित रावत। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 7:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा सुबह 7:20 पर। कुछ गैर फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता के तहत। प्रसारण समय होगा सुबह 7:45 का। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 से। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत हम लेकर आएंगे सुबह 8:15 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:45 से। सुबह 9 से 10 तक होंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10 से रिले की जाएगी जिले की चिट्ठी। 10:05 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। सुबह 10:10 से 11 तक होगा फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। सुबह 11 से आप सुन सकते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, और शाम 5:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 6:30 पर होंगे सदाबहार गीत और लोकरंग कार्यक्रम सुना जा सकता है शाम 6:45 पर और शाम 7:20 पर। कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:05 पर और शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे ग्राम सभा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8 से। रात्रि 8:15 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और कुछ गैर फिल्मी गीत और गजलें आपको सुनवाई जाएंगी कार्यक्रम संगीत सरिता के तहत। प्रसारण समय होगा रात्रि 8:30 का। समाचार संध्या का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा रात 9 से, और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगी संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसके पश्चात आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, और रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज इसका 63वां भाग आप सुन रहे हैं और मुख्य गायक स्वर है श्रीकांत पारगावकर का।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, जिसका 63वां भाग आपने सुना और मुख्य गायक स्वर था श्रीकांत पारगावकर का। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म छोटी बहन से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

छोटी बहन फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आराम फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज़ में। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इस गीत में संगीत है अनिल विश्वास का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ नौशाद के संगीत से सजा हुआ, और दर्द फिल्म के इस गीत में आवाज़ है उमा देवी की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बाबर फिल्म का गीत। आवाज़ है सुधा मल्होत्रा की, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रोशन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, बाबर फिल्म का ये गीत।

सुधा मल्होत्रा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचारों का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षा पत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिम बंगाल प्रशासनेन विरोध प्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानाम एकोन सप्तति किलोग्राम भार वर्गे रजत पदकम प्राप्तवती। अपरंच भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंह ग्लासगो नगरे पुरुषाणाम पंचपंचाशत किलोग्राम भार वर्गे प्रागुपांत्य चक्रे मुआले मुएंगो इत्येनम पराजित्य न्यूनातिन्यूनम कांस्य पदकम सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपांत्य चक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे संस्कृत में समाचार। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुन लेते हैं ये संदेश।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ एक विचार से शुरू होती है। ये विचार अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर अच्छे विचारों को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए तो उन विचारों का कद और बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम अपना दिमाग बुरी बातों गलत विचारों से हटाकर अच्छी बातों पर केंद्रित कर लें तो बुरी चीज़ें बुरी बातें बुरे विचार धीरे धीरे हमारे जीवन से गायब होने लगेंगे। श्रोताओं, सच तो ये है कि इस दुनिया में हम सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई और सच्चाई मौजूद है, पर हम ही कभी कभी उन्हें नहीं पहचान पाते और इन्हें तलाशने के लिए हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों के दरवाजे असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोल देंगे तो हम पाएंगे कि हम एक नए संसार में पहुँच गए हैं, जहाँ सिर्फ खुशियाँ और अच्छाइयाँ ही नज़र आएंगी। अगर हमारे पास आज किसी चीज़ की कमी है या हम किसी बात से दुखी हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपनी शक्ति और क्षमता पर यकीन नहीं करते। अगर हम अच्छे और सार्थक विचारों के साथ किसी काम को करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक ही होंगे। हम सभी के जीवन में अच्छे विचारों का बहुत महत्व है। विचार ही हमारे चरित्र व्यवहार आचरण और मानसिकता का निर्माण करते हैं। अच्छे विचार हमें संवेदनशील बनाते हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि परिवार समाज और देश का भी भला कर सकता है। श्रोताओं, सकारात्मक विचारों वाले लोग रचनात्मक और सृजनशील होते हैं। इसके विपरीत बुरी सोच गलत विचार हमें पीछे की ओर धकेलते हैं। हम अपने जीवन में प्रगति तभी ला सकते हैं जब हम भीड़ से हटकर अपने विचारों को अलग तरह से तराश सकें। विचार ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और विचार ही मनुष्य को नीचे गिराते हैं। हमारा हर विचार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। हमारे शरीर की मन की शक्ति जीवन में हमारी सफलता और हमारे साथ रहने से दूसरों को मिलने वाला आनंद, ये सभी बातें तय करती हैं कि हम किस तरह के विचार रखते हैं। श्रोताओं।

0: अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि जीवन में सदा सुविचार और सकारात्मक बातों को ही अपने जीवन में स्थान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव बनाए रखने से हम और हमारे आसपास का वातावरण सुखद और सुकून से भरा रहेगा। आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।
1: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
2: तो मिलेगी ना।
1: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। श्रोताओं, आज का विषय है सोयाबीन और उड़द में खरपतवार से हानि, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं अंकित रावत।
3: जैसे कि अभी खरीफ का हमारा सीजन चल रहा है, और खरीफ के सीजन में हमारे ज़िले में मुख्यतः सोयाबीन, उड़द, मक्का जैसी फसलों की खेती की जाती है। अधिकतर किसान हमारे क्षेत्र में इन्हीं फसलों की बोनी करते हैं। अब बात आती है खरपतवार। तो खरपतवार का मतलब ये रहता है, जो चीज़ हमने हमारे खेत में जो फसल बोई है, या कह सकते हैं जो भी हमने किस्म बोई है, फसल में भी किस्म तर, तो हमारे लिए केवल वो ही फसल है। अगर उसमें 2303 का पौधा दिखता है तो हमारे लिए उसको भी हम खरपतवार के रूप में परिभाषित करते हैं। क्योंकि इतना किसान भाइयों के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो चलो ठीक है, दूसरी वैरायटी है, उसको भी अपन फसल के रूप में ले लेते हैं। उससे कोई नुकसान नहीं होगी, हम लोग उसको मंडी में बेचते हैं। लेकिन जहां बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है, किसान हमारे किसान भाइयों को बीज के रूप में वो फसल का उपयोग होता है, वहां पे जो दूसरी किस्म रहती है, JS 21 72 खेत में ली है, तो केवल JS 21 72 के ही सारे पौधे होने चाहिए। अगर दूसरी किस्म के हैं या कोई अन्यत्र दूसरी फसल के पौधे, उनको सबको खेत में निकाल दिया जाता है। अब बात आती है कि खरपतवार से हमारे किसान भाइयों का कितना नुकसान हो सकता है। देखा जाए तो खरपतवार से हमारे किसान भाइयों को 30% से लेके 35% तक नुकसान केवल समय पे खरपतवार का प्रबंधन ना करने से होता है। क्योंकि जो हमारा पौधा रहता है, खरपतवार आप ये मान के चलिए एक आवारा फसल कह लो आप उसको, जो आवारा फसल है वो अपनी जितनी फसल, जितना आपका पोषक तत्व लेगी, जितना आपका पानी लेगी, उससे ज़्यादा हमारे खेत का पानी ले लेगा वो, उससे ज़्यादा हमारे ज़मीनों से वो आपका पोषक तत्व प्राप्त कर लेगा। जब वायुमंडल से आपका नाइट्रोजन फिक्स होती है या वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो उसको हर चीज में वो फसल से ज़्यादा वो प्राप्त करता रहता है। और हर चीज़ का समय है, हमारे सारे किसान भाई जानते हैं कि सोयाबीन की फसल है तो वो 90 से 100 दिन 105 दिन तक की होती है। हमारी उड़दा की फसल है लगभग 70 से 80 दिन की होती है। ऐसे ही मक्के की अलग अलग वैरायटी होती है जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन होता है, 110 दिन का भी हो सकता है, 120 दिन का भी हो सकता है, 105 दिन का भी हो सकता है, और उसमें भी जो बढ़वार की अवस्था रहती है। अगर हम सही समय पे खरपतवार का प्रबंधन ना करें तो उससे हमारे पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है। जैसे हमारे घर में छोटे बालक हैं, अगर उनका आपने बचपन में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, उनका उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता, वही स्थिति हमारी फसलों की भी रहती है। तो हमें सर्वप्रथम तो खरपतवार का प्रबंधन इसी अवस्था में करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो लगभग 1 महीने के आसपास, 1 महीने से लेके आपका 40 दिन तक, तो वो सभी बहुत ज्यादा हमारी फसलों को नुकसान कर देता है। तो उसके प्रबंधन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे किसान भाई केवल खरपतवार का प्रबंधन करते हुए अपनी उपज का 30% तक वृद्धि कर सकते हैं। जनरली हमारे किसान भाई ये जान लेते हैं खेत में कि वो उसकी पहचान कर लेते हैं, उसकी पत्तियों से कर लेते हैं कि वो चौड़ी पत्ती की खरपतवार है कि सकड़ी पत्ती की खरपतवार है। और हमारे किसान भाई जो अपना नींदा का प्रबंधन करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं। बाजार में जो दवाएं भी आती हैं, सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए भी आती हैं, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के लिए भी आती हैं, दोनों खरपतवार के लिए आती हैं। और अगर हम बात करें कि आपकी चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, तो खेतों में हमें हजार दाना, सफ़ेद मुर्गी, बन मकोए, महकुआ, पत्थर चटा, कनका, बड़ी दूधी, छोटी दूधी, इस प्रकार की खरपतवार हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार में बात करें तो आपका सांवा हो गया, कोदो हो गई, दूध धारा, इत्यादि प्रकार की खरपतवार हमारे किसान

0: किसान भाइयों को खेत में देखने को मिलती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय था सोयाबीन और उड़द में खरपतवार से हानि, और विशेषज्ञ थे अंकित रावत। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक सम

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे वन्य जीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक कल कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। इसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के से कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक में हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों की भावी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का हर निर्णय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को इससे जोड़ने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ मिलकर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण करेंगे और संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे विभागीय प्रकाशनों का विमोचन और वृत्तचित्रों के टीजर भी रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राज्य वन प्राणी बोर्ड के सदस्यों का अभिनंदन करेंगे। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर उज्जैन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी सहभागिता करेंगे। इस पर्व का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होगा, जिसके तहत 102 मेधावी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय गुरु परंपरा के शिल्पी महर्षि सांदीपनी का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जबलपुर में सुबह से ही ग्वारी घाट और तिलवारा घाट के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और खंडवा स्थित प्रसिद्ध श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। करीब 3 साल से तैयार निषादपुरा रेलवे स्टेशन का कल औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके नियमित ठहराव की शुरुआत की। इसके साथ ही निषादपुरा भोपाल का 4th रेलवे स्टेशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली से उज्जैन और इंदौर जाने वाले ट्रेनों को इंजन या ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्टेशन क्षेत्र के विकास का नया केंद्र बनेगा।
1: हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जिस गति से काम चल रहा है, रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है और यहाँ पे रानी कमलापति, हिरदाराम मुख्य स्टेशन, अब निषादपुरा एक के बाद एक चार चार सोगा चारों दिशा से मिलकर आ रही है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल शाम इसके आदेश जारी किए। शहडोल कलेक्टर बनाई गई मिशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब उन्हें नगरी विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं पार्थ जायसवाल को शहडोल, मृणाल मीणा को छतरपुर और कुमार सत्यम को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को अब राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था ई विकास को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत सीमित मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। कृषि आदान विक्रेता संघ ने याचिका में कहा था कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर इंटरनेट के कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस प्रणाली से खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगेगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि तकनीकी समस्या होने पर जिला कलेक्टर अस्थायी रूप से पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इंदौर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कल एक साथ करीब 2.25 लाख नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में शहर के विद्यार्थियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों को सामूहिक शपथ दिलाई। इंदौर पुलिस ने पिछले साल 85,000 लोगों को शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब उसने खुद ही तोड़ दिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की पुष्टि की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई यानी कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसका मकसद मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा जगाना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना था। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग और टेंट जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज से समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान अगले 20 फरवरी तक 5 चरणों में चलेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि अभियान की शुरुआत आज समरसता दीपोत्सव से होगी, जिसमें प्रदेश के 21,000 स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में वाराणसी से गुरु रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी लाई जाएगी, जिसके बाद समरसता यात्रा, संत संपर्क अभियान और छात्रावास संपर्क अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम तथा रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। देवास, सीहोर और हरदा सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है। ये सिस्टम ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ेगा और प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य हिस्सों में भारी बारिश करवाएगा। अब रुक करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की खबर का। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीते। हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया, वहीं गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का कर लिया है। वहीं धावक विशाल टीके भी 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवनिर्मित आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 के लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने किया। अशोकनगर की जनपद पंचायत परिसर ईसागढ़ में सुरक्षा जवान भर्ती शिविर का आयोजन कल किया गया, वहीं आज चंदेरी और कल जनपद पंचायत अशोकनगर में भर्ती की जाएगी।

झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत मेघनगर स्थित बाफना फाइबर्स परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडोरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 543 तथा डिंडोरी मंडला मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित किसानों को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। स्टार्टअप इंडिया द्वारा तेजस योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आज आयोजित किया जा रहा है और सिंगरौली कलेक्टर के निर्देशों पर सिंगरौली मेडिकल कॉलेज परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट तथा बिलियर्ड्स कोर्ट समेत कई सारी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे वन्यजीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं OP नैयर। सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोतागण हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। नेहरू चौक पैढ़र से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। इसी गीत को सुनना चाहा है बाबा कुटीर रायगढ़ से। ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान की। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे श्रोतागण हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति, कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अगली व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। डाबकी रोड अकोला से ये फरमाइश है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की। साहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमारे श्रोतागण हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े की व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मेरे हम सफर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
3: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
4: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
2: बात बन जाए।
4: 287 मेरी चाय।
5: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रही हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये अगली फरमाइश हम ले रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। हम तक पहुंची है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी की फरमाइश हमें मिली है। खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोतागण हैं मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, नेहा मेघा और ईशु भीमटे। कस्बा बड़ारा जिला अंबाला हरियाणा से श्रोतागण हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आराधना फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है एसडी बर्मन का।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम मनचाहे गीत की आखिरी फरमाइश ले रहे हैं। इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर सरगांव बाजार से ये व्हाट्सएप फरमाइश आई है। छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता हैं नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से श्रोतागण हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव। शिवाजी चौक कटनी से हमारे श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, झुक गया आसमान फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हो चुके हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम संगीत सरिता का। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज़ अदनान सामी के गाए इस गीत से। गीत को लिखा है समीर ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम है संगीत सरिता और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में फैज़ अनवर का लिखा हुआ ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से

0: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
7: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी

0: ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्य ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। श्रोताओं, समय है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राम गोपाल नायक के गाए इस गणेश भजन से।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे गणेश वंदना, और आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं ये चेतावनी। स्वर है काशीराम चौरसिया का।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौटाए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शकुंतला राजपूत का गाया हुआ ये लोकगीत। आइए सुनते हैं ये श्रृंगार गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुछ बुंदेली लोकगीत, कार्यक्रम है लोक संगीत। और आइए इसी क्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंद्रभूषण पाठक का गाया हुआ ये लोकगीत। आइए सुनते हैं ये भजन।

0: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
4: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये वर्षा गीत। स्वर है सुरेश चंद्र तिवारी का।

दौरे घर बारे से सबरी घर बारे से हाँ सबरी घर बारे से बेदौरे घर बारे से कुबजा घर बारे से अरे कुबजा घर बारे से।

का घर बरसे सुदामा घर बरसे, गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे, हाँ गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: यादें हमारी धरोहर है, यादें हमारे दिलों में बसती है, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के सागर केंद्र से कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम था लोक संगीत। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। सुबह के 8:45 हुए हैं। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, कविता कृष्णमूर्ति के और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा है प्रकाश कपाड़िया ने और संगीत है इस्माइल दरबार का और फिल्म है देवदास।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में दंगल फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
3: तो मिलेगी ना।
2: पर कैसे?
3: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत और श्रोताओं सुनवा रहे हैं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत कॉरपोरेट फिल्म से। आवाज़ें हैं कैलाश खेर और सपना मुखर्जी की, गीत को लिखा है संदीप नाथ ने और संगीत है समीर टंडन का।

कॉर्पोरेट फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों ही आँखों में इशारा हो गया।
0: विविध भारती से चित्र लोगों को रब गूंज रही है। शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब अंकित तिवारी की आवाज। फिल्म का नाम है एक विलन।

सुबह के 9:24 हुए हैं। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के संग हैं और शान की आवाज गूंज रही है जो किसी के मुस्कुराने की बातें कर रहे

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: आज के फनकार।

0: के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मारे, जंप पे, मारे, जंप पे।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। ला

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: जरा हट के।
1: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट के बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट के बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे। लोग

0: बंबई का बाबू नाम मेरा अंजना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बंबई का बाबू नाम मेरा अंजना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी।
1: उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
1: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: तुम्हारे तो कगोला बात नहीं है डर की ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर है बा।

0: मामला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में

0: देखा। जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दरिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
2: दुखता उगता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ, ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे। ऐसे
1: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आए तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा,
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे,
1: इधर घूमो करवट,
2: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी,
3: मिस्टर जो डिक्रूज सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता।
1: उधर मैं टेलीफोन देखता था, तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
3: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
1: छोकरी, तुके टेलीफोन छोकरी के हाथ में था।
3: यस,
1: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता।
3: हम उसका बात करते थे वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है। डोंट फॉरगेट तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
4: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
1: जाएगा।
3: मैं सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया,
4: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
1: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
3: यू शट अप। सुजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है, तुम क्या बोला, तुम क्या बोला।
1: मैं बोला कि तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है, मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
4: हम जानता तुम इधर ही रहेगा।
0: सन 1952 में जाल,
1: क्या मुसीबत है, लोग रोमांस का भी चांस नहीं देता है।
4: अजीब आदमी है ये, कोई रोमांस करने का जगह है, यहाँ तो लोग आएगा ही। चलो किधर घूमने को चले, गाड़ी नीचे उतारो।
1: नीचे उतारने के लिए थोड़ी ऊपर चलाया है।
4: फिर
1: इसलिए कि जब तक तुम ये नहीं बताएगा कि तुम हमसे शादी कब बनाएगा, गाड़ी नीचे नहीं जाएगा।
4: ओफो, तुम्हारा खोपड़ी को सर्विस करना पड़ेगा। अरे बाबा, जब तक तुम अंकल से बात नहीं करेगा तो शादी कैसा होगा।
1: अंकल, ओ नो, हम उससे बहुत डरता है, वो तो हमारा होल बॉडी का सर्विसिंग कर डालेगा।
4: नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं है, प्रॉमिस करो तुम घर आएगा।
1: प्रॉमिस, जरूर आएगा, काहे को नहीं आएगा। अभी अंकल हमको खलास करेगा ना, जब भी आएगा।
0: 1953 में ठोकर, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मैरीन ड्राइव, रेलवे प्लेटफॉर्म, चंगेज खान, नया दौर, मधुमति, अमरदीप, काला पानी, लाइट हाउस, कागज के फूल।
5: मिस्टर आयर, आर यू देयर। हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा।

ब्लैक कैट, जिंदगी और ख्वाब, सूरज, मॉडर्न गर्ल, शिकार, दिल और मोहब्बत, और इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में चाची 420। अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला की बहन थी नूरजहां, जिनसे इनका विवाह हुआ था।

0: जॉनी वॉकर को उनकी भूमिकाओं के लिए हम हमेशा याद करेंगे। उन्होंने जो जीवंत अभिनय किया है सिने जगत के रुपहले पर्दे पर और जो छाप छोड़ी है हमारे दिलों में, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते।
1: जाने कहां

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का। संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आइए सुनते हैं रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत माहेश्वरी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत माहेश्वरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

रायसेन जिले के सांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित सांची रेलवे स्टेशन का लोकार्पण बीते दिनों राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में आयोजित

युवाओं को तैयार करने का केंद्र है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार, कौशल विकास और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार सकेंगे। रायसेन कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में स्वीकृत 755 नल जल योजनाओं में से 642 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष योजनाओं पर काम जारी है। वहीं रायसेन जिले के सनखेड़ी गांव में नए बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण बीते दिनों किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपकेंद्र का शुभारंभ किया। करीब 2,90,00,000 रुपए की लागत से बने इस उपकेंद्र से सनखेड़ी सहित आसपास के 9 गांवों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए आगामी सत्र की कार्य योजना पर चर्चा की गई। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों 305 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि जारी की गई। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने एक क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर 315 परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण भी किया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रायसेन में बीते दिनों एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। खरीफ फसल 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों को योजना की जानकारी देने और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के उद्देश्य से रायसेन में फसल बीमा जागरूकता रथ रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर मिलने वाली बीमा सुरक्षा और दावा प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। कृषि विभाग के अनुसार रायसेन जिले में खरीफ मौसम के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। जिले में अब तक करीब 1,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है, जिसमें से करीब 64,000 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। उपसंचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 42,000 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई रैक प्राप्त हो रही है। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का कार्य 53 उपार्जन केंद्रों पर जारी है। जिले में करीब 45,000 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से करीब 32,000 किसानों ने अपने स्लॉट बुक किए हैं। अब तक करीब 9,000 किसानों से करीब 80,000 क्विंटल मूंग का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं जिले में इस वर्ष मानसून के दौरान 1 जून से 28 जुलाई तक कुल 412.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। भू संसाधन प्रबंधन विभाग के अनुसार जिले में सबसे अधिक बारिश गैरतगंज में 531.4 मिलीमीटर और उदयपुरा में 496 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 767.5 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत रायसेन जिले के ग्राम बमोरी में किसान संजय कुशवाहा की वर्षों पुरानी बिजली समस्या का समाधान किया गया। कंपनी ने उन्हें ओन योर ट्रांसफार्मर योजना की जानकारी देकर स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया। करीब 1,40,000 रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर लगने के बाद अब उन्हें हर साल लगभग 24,000 रुपए की बचत होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, वाचन स्वर था अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। सर नमस्ते।
3: नमस्कार
2: सर। साप्ताहिक इंसुलिन का जो इंजेक्शन आया हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं।
3: बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। एक नया इंसुलिन आया है। इंसुलिन में नया कुछ नहीं होता, पर इंसुलिन जब चमड़ी के नीचे लगता है तो वो किस प्रकार से क्रिस्टल बनाता है और क्रिस्टल से टूट टूट के कैसे इंसुलिन खून में आता है, वो प्रक्रिया जरूर बदलती है। तो पहली बार जो शुरू में आपका इंसुलिन था वो 4 से 6 घंटे में खत्म हो जाता था, जो

0: आपका प्लेन इंसुलिन था
1: जी,
0: फिर आपने थोड़ा सा एनपीएच जोड़ दिया तो एनपीएच इंसुलिन आया जो 15 से 16 घंटे असर दिखाता था। फिर उसके बाद आपका ग्लार्जिन नाम का इंसुलिन आया, वो लगभग 16 से 20 घंटे 24 घंटे असर दिखाता था। फिर बात आई डग्लूडेक नाम के इंसुलिन की, जो डग्लूडेक का इंसुलिन 3 दिन में एक बार लगाने के लिए आया था, पर घूम फिर के बात यही हो गई कि एक दिन में एक ही बार लगने लगा।
1: जी जी,
0: तो इन सभी इंसुलिनों में ये था कि धीरे धीरे इस इंसुलिन को बेसल इंसुलिन कहते हैं इसको, तो इसको लगाने से इसमें किसी भी प्रकार से पीक यानी एक ऐसा स्तर जो बहुत बड़ा स्तर इंसुलिन का माना जाए खून में नहीं आता, छोटे छोटे स्तर पे इंसुलिन आता रहता है खून में जिसको बेसल इंसुलिन कहते हैं। तो ये जो इंसुलिन होते हैं ये आपके खाली पेट शुगर कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो जिनका खाली पेट शुगर कंट्रोल नहीं है, खाली पेट और भरे पेट शुगर के बीच में 15-20-30 पॉइंट का अंतर है, वो अगर इस प्रकार के इंसुलिन लगाते हैं तो उनका शुगर अच्छा हो जाता है, क्योंकि खाली पेट नॉर्मल होगा तो भरा पेट भी नॉर्मल होगा।
1: जी जी।
0: पर जिनके खाली पेट और भरे पेट में बहुत लंबा अंतर होता है, मान लीजिए खाली पेट आपका 150 आ रहा, भरा पेट आपका 250-300 आ रहा है, वहाँ ये काम नहीं करेगा, वो ये केवल खाली पेट ठीक करेगा। तो इस इंसुलिन में फायदा ये है कि इसमें बिल्कुल भी पीक नहीं आता, मैंने एक बार लगाने के बाद एक स्तर पे ही इंसुलिन बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि 4 यूनिट इंसुलिन खून में अचानक से 10 हो जाए, तो रात में खास तौर पे आप सो रहे हो, अर्ली मॉर्निंग आपका शुगर डिप नहीं होना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए ये बड़ा ही अच्छा इंसुलिन आया है।
1: अच्छा, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या कुछ अलग है?
0: देखिए ये है कि 7 दिन का डोज आप एक साथ लगाते हो। प्रश्न आएगा कि भाई 7 दिन का इंसुलिन मैं एक साथ लगाऊंगा तो ज्यादा असर तो नहीं आएगा? देखिए खूबसूरती ये जो अंदर जैसी चमड़ी में लगता है, तो वो जो ग्रेनुलेशन बना के एक हेक्सामर्स बनाते हैं, एक तरह के क्रिस्टल्स होते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे किस प्रकार खून में आते हैं वहां जादू छुपा हुआ है। तो 7 दिन का डोज एक साथ लगाने के बाद भी एक साथ खून में पूरा इंसुलिन नहीं आता, तो 7 दिन धीरे धीरे शनै शनै आपके खून में आएगा, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।
1: अच्छा सर, लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि इसकी कीमत क्या है इसकी इस समय?
0: ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ग्लार्जिन नाम का इंसुलिन बड़ा फेमस इंसुलिन है, ट्रेड नेम अलग है उसका, पर उसकी कॉस्ट जितनी आती है लगभग वही कीमत में, जबकि वो आजकल जेनेरिक हो गया है, उसी कीमत पे इस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो ये कीमत के मामले में बिल्कुल भी महंगा नहीं है, लगभग मिलता जुलता है।
1: सर एक सवाल और है कि जैसे हमने ये इंजेक्शन लगा लिया है, अब इंसुलिन एक सप्ताह के लिए हमारी बॉडी में स्टोर है जो रिलीज होता रहेगा, खान पान में बाकी और जीवन दिनचर्या में आजादी कुछ ले सकते हैं?
0: देखिए इसमें आजादी ये बोल सकते हैं कि आपको 7 बार इंसुलिन लगाने की जगह एक बार लगाना पड़ेगा, सबसे बड़ा फायदा,
1: सबसे
0: क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग डरते हैं टीके से। दूसरा फायदा है कि एक स्तर बराबर बना रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि साहब अब इंसुलिन लगाएंगे तो फिर से वो इंसुलिन खून में आएगा फिर स्तर बनाएगा। एक बार लगाया तो आपको टाइम इन रेंज का कंसेप्ट जो है कि 70 से 180 के बीच में शुगर 24 घंटे में रहना चाहिए, उस इस इंसुलिन को लगाने पे 61% टाइम और इन रेंज रहता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं सर।
0: साइड इफेक्ट वही साइड इफेक्ट हैं जो इंसुलिन साधारण इंसुलिन में होते हैं, वही साइड इफेक्ट है।
1: श्रोता वाकई ये बड़ी रोचक जानकारी सर ने हम सबको दी है, और जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं इंसुलिन लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए, आगे हम इस विषय पर और सर से बात करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ध्यान से लिख लीजिए, नंबर है 8878112343। नंबर फिर सुने 8878112343। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। मिलते हैं अगले बुधवार, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनो सक्सेना का नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुन लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार चार्ली भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक है, आनंद ले रहा है बरसा को। दुकाने तो बैठे हैं, पानी गिर रहा है, तो तेज बारिश हो रही है।
0: पानी गिर रहा है आपके यहाँ?
1: हाँ।
0: सागर में तो पानी नहीं है।
1: अच्छा, आपको तो भगवान की देन है, देखो सर जहाँ ऐसा हो जाए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, देश की प्रगति में आप कैसे योगदान दे सकते हैं?
1: तरक्की में तो सर अपना बलिदान कर दे।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जब अपन को देश आजादी में बहुत हो तो अपन
0: हमारे साथ, हमारा आजाद देश है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी ये है कि भाई हम इस देश की अक्षुण्णता को, एकता को बनाए रखें, और साथ ही हम अपने उन देशभक्त शहीदों को भी नमन करें, उनके परिवार को भी सम्मान दें जो सीमाओं पर डटे रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं। तो हमें ये बताएं कि कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अब गाना सर अपने देश के ऊपर से सुना दे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हाँ, मेरे देश की धरती।
0: बहुत ही बढ़िया, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर चार्ली भाई, फिल्म उपकार का ये गीत।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: हेलो,
4: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आप, अपना शुभ नाम बताएं।
3: धर्मेंद्र लोधी बोल रहा, ग्राम खमरिया, जिला छतरपुर, तहसील बक्सवाहा। सर मैं दिव्यांग हूँ, आंखों से हीन हूँ। सर रेडियो में चलाता रहता हूँ। सर
4: तो रेडियो पे हमारा प्रसारण अच्छा मिलता है आपको?
3: जी सर, रेडियो पे बहुत अच्छा आता है। सुबह सुबह की जो बात आती है, विवरण है, फोन करेगी सुने, फोन करे लोग भी सुने,
4: सभी सुनते हैं
3: बच्चों की, हम सब रेडियो सर।
4: अच्छा हमें ये बताएं धर्मेंद्र भाई कि जो देश पर हमारे वीर सैनिक बलिदान देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो उनके प्रति आपके मन में क्या भावना होती है?
3: सर मैं तो यही बोलूंगा सर कि अपने जो बलिदान देते हैं, सर जो भी कर्मचारी काम कर रहा है,
4: हाँ हाँ,
3: जैसे खेती में किसान काम करता है,
4: हाँ हाँ,
3: तो अपना बलिदान देता है कि चलो पूरा देश का भरण पोषण करता है। सर
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: सर, जैसे अपना कर्मचारी है, कोई भी सरकारी अधिकारी है, निष्पक्ष अपना काम करे, जनता के हित में काम करेगा, जब ही राष्ट्र का भला होगा। सर
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश के विकास के लिए हम सबका योगदान जरूरी है। आप
3: जी सर,
4: एक आम नागरिक का भी योगदान जरूरी है कि वो नियमों का पालन करें, जो
3: नियमों का पालन करें। सर हाँ। एक तो सर ऐसा है, मेरी रेडियो से बात जा रही, दुनिया सुन रही होगी, जो भी कर्मचारी है, सरकारी हो प्राइवेट हो, निरपेक्ष काम करेगा जब देश हित में काम करेगा।
4: लेकिन सैनिक हमारे रात दिन दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, उनकी वजह से वो जागते हैं तभी हम सो पाते हैं।
3: जी सर,
4: तो उनका बलिदान तो अद्भुत है, अनूठा है, और हम चाहेंगे कि उनके लिए तो हम प्रणाम करें, और जब भी उनके परिवार का भी कोई सदस्य मिले या कोई सैनिक मिलता है हमें, अगर वो किसी संकट में है तब हम उसकी मदद जरूर करें। अब बताएं कौन सा गाना सुनवाए हम आपको?
3: फिल्म का नाम तो याद नहीं है। सावन का महीना पवन करे सूर, सर यही गाना सुनना है। सर
4: आइए हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म मिलन का ये गीत।

0: हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत है आपका।
1: जी सर, हरीश चौरसिया तिली वार्ड से।
0: हरीश भाई, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। क्या हाल चाल है आपके?
1: सर बढ़िया है।
0: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा हाँ हरीश भाई, हमें ये बताएं कि हमारे देश की प्रगति में कैसे योगदान हम दे सकते हैं।
1: अरे ये पुलिस ऑफिसर लोग हैं या मिलिट्री वाले हैं, इनका सम्मान करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: हाँ, किसी को बिना मतलब की कोई सताना नहीं चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना चाहिए।
0: हाँ, अगर हम विनम्रता के साथ ही रह रहे हैं अपने देश में, अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं, लोगों से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों से बच रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है
1: जी।
0: देश के लिए। और योगदान तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी बहुत किया है हमारे देश की आज़ादी के लिए। और आज जो हमारे सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं सीमाओं पर चहुं ओर रात दिन, उनका भी योगदान बहुत ज्यादा है,
1: उनका सम्मान करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताएं हरीश भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: देशभक्ति का कोई सा भी सुना दे, ये बॉर्डर का सुनवा।
0: बॉर्डर का कौन सा?
1: संदेश आते हैं।
0: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: हेलो सर, नमस्कार।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करें गीत सुने में।
2: जी, अमित का चौक टेगरवाड खड़ाई से परमानंद बोल।
3: क्या हालचाल है परमानंद जी आपके?
2: अरे बरसात नहीं हो रही है, बड़े बेहाल है सभी के।
3: पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ सकता है।
2: ये बात तो सर, हमारे यहाँ खुड़ाई विधानसभा में 1,00,000 पौधा का बना एक पेड़ माँ के नाम वास्तव में लगाया गया। हमारे यहाँ टेंट लगा था जन सहयोग से, 1,00,000 पेड़ हुआ बिल्कुल लगाया गया।
3: तो बहुत ही बढ़िया
2: वगैरह। हाँ, ये
3: बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये भी देश हित में दिया जाने वाला योगदान है।
2: जी, जी, जी।
3: अच्छा, देशभक्ति की बात होती है तो हम लगातार अपनी सीमाओं की तरफ देखते हैं कि सीमाओं पर वो रात दिन जागकर पहरा देते हैं, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। आपका क्या कहना है हमारे उन सैनिकों के बारे में?
2: कहना तो ये है कि जी, उनको उनको मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए, देते हैं सब लोग।
3: बिल्कुल,
2: और
3: बिल्कुल।
2: उनको अपन सलाम करते हैं, उनकी उनका साहस, उनके साहस से, उनकी सुरक्षा से आज देश सुरक्षित है, अपन सुरक्षित, हर नागरिक सुरक्षित है। सर, वो क्रांति का फिल्म का गीत है जी, तो वो देशभक्ति गीत आप सुना दीजिए क्रांति फिल्म का।
3: बहुत ही अच्छा लगा परमानंद जी आपके विचारों को जानकर कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों की सहायता भी करनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: हेलो
3: जी, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
2: जी नमस्कार सर।
3: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: अशोक पटेल बोल रहा है सागर से।
3: अशोक भाई, कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं सागर मकरोनिया में?
2: हमारा गड़ाकोटा के आगे गांव है, वहां हम खेती करते हैं और यहां हम अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए हैं।
3: बहुत ही बढ़िया है। अच्छा हमें ये बताएं,
2: एक लड़की है हमारी।
3: जी जी, देश के हित के लिए हर एक आदमी क्या कर सकता है?
2: अब देशभक्ति के लिए तो ये भी है सर, तो पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और ये भ्रष्टाचार है इसको भी अपन रोकें, अपने स्तर पर जितना अपन में समझ है, अपन में ज्ञान है।
3: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: और साफ सफाई का भी ध्यान रखें, शहर में जो कचरा फैल रहा है उसको भी ना अपन फैलाएं।
3: बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये भी एक देश हित का काम है कि अगर हम अपने आसपास सुरक्षित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लोगों में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी काम हो जाता जो हमारे देश की छवि दुनिया भर में चमका के रख देता है।
2: जी जी, और जी असामाजिक तत्व हैं उन पे अपन सोसाइटी में भी रोक लगा सकते हैं सब लोग मिलकर के।
3: हाँ, और साथ ही हम हमेशा याद रखें उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, और साथ ही हम हमेशा सैल्यूट करें उन सैनिकों के लिए, उन वीर सैनिकों के लिए जो रात दिन पहरा देते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और अपना अपने परिवार से दूर रह के हमारे परिवार के साथ हम रह सकें इसके लिए वो मेहनत करते रहते हैं।
2: जी।
3: तो जब भी कभी कोई सैनिक मिले, अगर किसी की प्रकार की सहायता चाहता है तो आप लोग मदद जरूर करें।
2: जी हाँ, ये तो होना चाहिए, सब लोगों में होना चाहिए उनके भाव, श्रद्धा भाव।
3: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं अशोक भाई, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
2: फिर देशभक्ति का वो कर्मा का सुना दो आप, दिल दिया है जान भी देंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, आइए अशोक भाई सुनवाते हैं हम आपको आपकी फरमाइश पर फिल्म कर्मा का ये गीत।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत करते हैं आपका। अपना नाम बताएं।
0: सर जी राजीव अहरवार भूतेश्वर। बस बढ़िया है सर, आपके सोमवार का दिन का इंतजार कर रहे थे, हमने कॉल करूं सर से बात करें।
1: बहुत ही अच्छी बात है, आप याद रखते हैं दिन को। और राजू भाई हमें ये बताएं कि हम अपने देश के विकास में, देश के हित में कैसे सहयोग कर सकते हैं और आप कैसे सहयोग करते हैं?
0: सर, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कभी भी, देखभाल करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने
0: जी। जैसे अभी ट्रेन में जाते हैं तो कई प्रकार से गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, उसके जो सामान रहते हैं उसको अपन को सुरक्षा रखनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, अच्छा, और जब देश की आजादी की बात आती है तब आपको क्या क्या याद आता है?
0: वो तो अंदर से ये जुनून रहता है सर, एक अंदर से शांति मिलती है कि जो आज अपन है, जो हमारे बड़े बड़े जो महात्मा गांधी जैसे कई, इनको अपन याद करते हैं और अच्छा लगता है।
1: और जब वर्तमान में हमारी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बात होती है तब आपको क्या याद आता है?
0: जवान। हाँ सर, वो तो आपने अपने भारत का एक नारा है सर, जय जवान जय किसान, ये तो इनकी वजह से आज अपन सुख से सो पाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने राजू भाई
0: जी।
1: तो बता दें इनके लिए कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं आप? इससे पहले कि हम राजू भाई से उनकी फरमाइश पूछते, हमारा उनसे संपर्क टूट गया। और आइए हम सुनवाते हैं राजू भाई को आकाशवाणी की ओर से ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करने की सुने में।
1: जी नमस्कार सर,
0: अपना शुभ नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम नंद कुमार मिश्रा है।
0: नंद कुमार भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: रेलवे स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, आरएमएस ऑफिस के पास से।
0: नंद कुमार जी हमें बताएं क्या करते हैं आप?
1: पान की दुकान है साहब स्टेशन पे।
0: अच्छा अच्छा, हमें ये बताएं कि हम अपने देश के लिए एक साधारण व्यक्ति के तौर पर क्या योगदान दे सकते हैं?
1: अब जन सुविधा जैसी बन पड़ती है तो हम लोग बैठे बैठे यहीं से करते रहते, कहीं जा तो पाते नहीं है।
0: हाँ, हाँ।
1: लगातार दुकान पे बैठना पड़ता है।
0: हाँ।
1: तो कहीं जा तो पाते, जन सुविधा के लिए जो कुछ अपन बन पड़ता है अपन वो करते हैं। जैसे जनरली आप देख लीजिए,
0: हाँ,
1: आज के समय में पानी की बहुत सख्त जरूरत है, तो 4 बाटले पानी की भर के रखते हैं, उनको पानी पिलाते रहते हैं आदमियों को, ये चीजें कर पाते हैं और क्या करेंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं नंद कुमार जी, हम अपने तरीके से अपने देश के विकास में अगर थोड़ा सा भी सहयोग देते हैं, थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, तो वो योगदान बहुत ही अच्छा
1: है। जो बन पड़ता है वो तो करते हैं बराबर।
0: हाँ, और देखिए योगदान देने की बात आती है तो हम याद करते हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनका हमें नाम भी नहीं पता, जो गुमनामी के तौर पर अपना बलिदान देकर इस देश की आज़ादी के लिए और दूर चले गए, उनका नाम भी नहीं पता है। हम ऐसे बलिदानियों को भी नमन करते हैं, और नमन करते हैं हम उन सैनिकों का जो आज भी लगातार रात दिन अपने घर अपने परिवार को छोड़कर हम चैन की नींद सो सकें, इसलिए वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो हम उन सारे लोगों को याद करें, उनका नमन करें, और उनको जितना सहयोग हो सके वो जरूर करें। जरा सा भी अगर योगदान हम दे सकते हैं, कहीं भी कोई किसी प्रकार का नुकसान अगर पहुंचा रहा होता है, कहीं कोई देश के खिलाफ अगर कोई बात हो रही होती है, तो हम उसमें जाकर देश की रक्षा की बात जरूर करें। तो नंद कुमार भाई बताएं कौन सा गाना सुनवाए हम आपको?
1: गाना सुनेंगे सर, देशभक्ति का गीत हो सर सुनाइए आप।
0: और आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

अपने। और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है देश की सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में अपना सहयोग दें, यही होगी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विनोद यादव ने, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे काय भैया, ये सो मोल अटकाई काय को दिए थे?
2: अब का बताएं भज्जा, तुमकी कोनो ये कऊ परेशानी हो तो बतावे, ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया ये सो का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तो मैं का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू बो ढोर बीमार, कहूँ ये खोजा परेशानी, कहूँ वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा
1: हाँ। हाँ। हाँ। मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20 है, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।

0: और सीधो लाख का कछु वो करना पड़े।
1: बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को। वो सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया, सागर

0: 9-7।
1: एक बेर फिर से बता दे भज्जा।
0: भैया फिर से लिख लो, इसमें कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
2: अपना पसंदीदा प्रोग्राम लिजा के लफ्ज और लम्हे सुनिए हर शुक्रवार शाम 5:30 पर।
3: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं, आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से, प्रकाश वर्मा।

0: हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
0: जी
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
0: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
0: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
0: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
0: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
0: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
0: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: जी प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता, जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन हाँ, मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद? उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे।

0: देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
0: इसको इसमें छेद तो
1: हाँ
0: कर दिए। हाँ। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैंप पे यहाँ रख देता हूँ।
0: हाँ हाँ ठीक है। अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही
1: है। देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: Эдний дүнөөсөө мэдэт гараал икэн. Камьяби нэмэлт. Эсэлтэ кэби мансил баттуре. Let's go. Мене ярака. Let's go табая. Ха. Яа та тут ике. Аб дэхтаа о кэ хаутай.
1: विलियम
2: हाँ जॉन
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो
2: करता हूँ
1: हाँ और सुनो
2: हाँ
1: आप कमरे में अंधेरा करो
2: एक मिनट
1: हाँ
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ
1: हाँ ठीक है और सुनो स्क्रीन ऑन करो
2: हाँ ठीक है अरे वाह जॉन
1: हाँ
2: देखो सामने
1: अरे हाँ
2: क्या बात है
1: ये तो कमाल हो गया मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी
2: हाँ जॉन
1: हाँ
2: हमें कामयाबी मिल गई कितनी मेहनत की थी हमने
1: हाँ
2: जॉन बहुत बहुत बधाई हो
1: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए। यहाँ?
2: हाँ, आइए। इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा इधर? हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
4: वाओ,
5: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: हमारे सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट दिया रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ